विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: பாட்டுக்கு இட்டால்
1: கேட்டு இருக்கீங்க விவித் பாரதி தமிழ் எஃப்எம் 102.3 மனங்களில் என்றென்றும் முழுமையான கொண்டாட்டம்.
2: இன்னும் சற்று நேரத்தில் கேட்கலாம் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
3: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth and medical product regulations. Hectic parleys continue in Tamil Nadu among parties as TVK is set to stake claim for forming government despite lack of majority figure. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tenders resignation. Swearing-in ceremony of the new government to take place after 11th of May. India and European Union launch joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity. IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad to take on Punjab Kings in the evening. And now the news in detail. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. We now go over live at Hyderabad House, where Prime Minister Narendra Modi is briefing the media on the outcomes of the talks.
4: Fast payment system bhi jald hi link hone ja rahe hain. Saath hi, ab hum dono desho ke beech, state to state aur city to city cooperation ko bhi majboot karne ja rahe hain. Friends, Vietnam भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बीजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है. इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है. हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ, शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे. वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा. योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं. वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं. अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे. जैसा कि बुद्ध की शिक्षाओं की भावना है कि यदि आप किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह आपके अपने मार्ग को भी प्रकाशमान करता है. इसी
3: In Tamil Nadu, political parleys to form a new government under Tamilaga Vetri Kadagam, TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of majority figure of 118. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar is to arrive in Chennai later this afternoon from Kerala. The Chief Minister-designate C. Joseph Vijay will be